अरे तुम का बताई भैया, हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

ऐसा झक्कर उठ ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी, बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग के हम कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भगे, कभी उधर भगे, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो आई

अलबेली करे अटकेली उसकी बड़ी है धूम है ऐसी मन भावन सब देखें उसको पलट पलट और घूम घूम वो नगर नगर जाए टगर टगर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला पलकों में लिए एक सपन लोक अधरों में लिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो मधुमती

0: दादू वो यहीं पर,
1: यहीं
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: I'm sorry.
1: अल्लाह बच्चे बड़े हो रहे हैं बेटा, उनको भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी ना। छोटा तो देखो कितना छोटा।

चला ऐसा चक्कर, उठी ऐसी आंधी, बड़ी हमका करनी, बड़ी कूदा फांदी, बड़ी लंबी चौड़ी हुई भागा दौड़ी, दिन रात जो हमने जाग जाग की ऐसी भागम भाग, कि हम कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी ही आ गए, कभी हुआ गए, कभी इधर भगे, कभी उधर भगे, फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान, तो आई हमरी जान में जान, तो आई।

वो नगर नगर जाए टकर टकर और अंग अंग में ज्योति चमके जगर जगर सुंदर बाला बलकों मिलिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो मधुमती है।

वाला खुल जाए बंद या कल का ताला, फिर तो ऐसा कर धमाल, सीधी कर दे सब की चाल। हो छोरा, हो छोरा।

सावरियो घट माए तन कटे भाड़वा जाऊं रे, पण आज स्वर आज रागी राजस्थानी धरती माथी तमे हालता हालता हालता गुजरात मां आवो एटले गुजरात नो पहलो प्रदेश आवे उत्तर गुजरात, अने उत्तर गुजरात मां आज स्वर मां आज राग

मक्का पालनपुरी नी ओळख એટલે ट्यून रहे मस्त रहे सांभळतो रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।